0: सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता आयका महाराष्ट्र से तो
1: अभी हमारी पुत्र आहो, अभी हजारे राजे आहो।

ये भी बहुत ही खूबसूरत कलाम कर्कली ब्रदर्स की आवाज में, और 1437 अब ख़त्म होने जा रहा है, हम तकरीबन 20 ज़िलहज पर है, और अगला कलाम है हमारा हुसैन, ज़िंदगी है, बढ़ रहे हैं मुहर्रम के महीने की तरफ।

और घर का हर कोना रो पड़ा। दीवारें आज भी उसका नाम लेकर मुझे पुकारती हैं, लेकिन वो आवाज अब कभी लौट कर नहीं आती। जब से मां गई है घर में अजान तो होती है, मगर सुकून नहीं उतरता। रोटियां आज भी बनती हैं, लेकिन उनमें मां के हाथों वाली दुआ नहीं मिलती।

0: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है अंजुम. माशाल्लाह मैं हमारी रशीदा अपा नखलिस्तान से कहती माशाल्लाह ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जस्ट लव अंजुम रेंडिंग द ब्यूटीफुल मीनिंग तुमको जे देखा एंड लविंग द प्रोग्राम. और आंटी गौरी आल्सो सेज दैट द सॉन्ग वाज हर हस्बैंड्स वेरी फेवरेट लेट हस्बैंड्स वेरी फेवरेट. अंजुम लेट्स टॉक इन उर्दू नाउ. आई एम श्योर यू सिंग सो आप उर्दू भी बोलती होंगी अच्छी तरह से.
1: मैं ठीक से उर्दू बोल नहीं सकती हूँ लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी.
0: नहीं आप
1: मैं उर्दू में गा सकती हूँ
0: बेशक बहुत अच्छी तरह से आप गा सकती है अंजुम. और आपकी आवाज माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं और आपके गजल बहुत ही दर्द होता है उनकी उस आवाज में जब आप गजल बोलती हैं तो. और मुझे बताएं कि आप उर्दू मतलब आपकी शौक है कि आप जस्ट ऐसे अपने
1: ऐसे ही. माय डैड यूज़्ड टू स्पीक उर्दू टू मी एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज स्पेशली फॉर पोएट्री. एंड अगेन द डर्ड दैट यू टॉक अबाउट आई थिंक इट्स इट कैन बी द उर्दू लैंग्वेज इज सो इवोकेटिव ऑफ यू नो डिफरेंट इमोशंस. सो
0: डेफिनेटली. तो अंजुम आप हमें एक सॉन्ग सुनाएं हमारे सुनने वालों को.
1: जिस के रखी is one of my favorite results, I think.

बहुत खूब बहुत खूब. कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है. ये है हमारी प्यारी अंजुमारा खान जो शो करने जा रही हैं महफिल यारा म्यूजिकल गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स एट बैक्सटर कॉन्सर्ट हॉल 13 जून 2026 एट 7:30 PM. और इंडिया से आर्टिस्ट आ रहे गौरव वासवानी, अतीश साहब, संजय दस, अरशद खान और राव साहब, अमित गाडगिल और रूपक शर्मा. और फिर हमारे लोकल आर्टिस्ट भी होंगे. और 15 जून को रूहानियत होगी, गजल शो होगा, एकोज ऑफ लव इन सोलफुल मेलेडी एंड इवनिंग ऑफ गजल सूफी एंड रोमांटिक सॉन्ग्स इस्लामी ऑडिटोरियम में. और आर्टिस्ट होंगे जरीना साबले और शमीम राव. तो भूलिएगा नहीं, अगर आपने टिकट्स खरीदे नहीं हैं तो टिकट्स बहुत जल्द खत्म हो रहे हैं, तो आपने टिकट जरूर ले आए. और अगर आपको टिकट्स लेने हैं तो आप 0827786175 अंजुम को कॉल कर सकते हैं. तो चले सुनते हैं जरीना साबले की आवाज में ये अगली गजल.

जी और मोहम्मद रजा साहब, हमारी प्यारी रशीदा आपा, इन सबको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। मैसेज आया है बॉबी भाई की तरफ से। बॉबी भाई कैसे आप? बॉबी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सालगिरह मुबारक, जो 11 जून को है हमारी प्यारी बहन हलीमा बावा और उनकी बेटी शाबिरा मोहम्मद अके समीउल्ला पाक और हुरिया पाक। अल्लाह अपने फजल करम से नबी के सदक़े में उन सबको उनकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। ही आता है उनकी अम्मी शम्स बेगम पाक, पूरी पाक फैमिली, शंकर फैमिली, बावा फैमिली और ख़ासकर बानू और बॉबी भाई की तरफ से जजाकल्ला खैर। बॉबी भाई आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का। अगला कलाम है माँ चली गई घर सूना हो गया।

माँ चली गई और घर का हर कोना रो पड़ा। दीवारें आज भी उसका नाम लेकर मुझे पुकारती हैं, लेकिन वो आवाज अब कभी लौट कर नहीं आती। जब से मां गई है घर में अजान तो होती है, मगर सुकून नहीं उतरता। रोटियां आज भी बनती हैं, लेकिन उनमें मां के हाथों वाली दुआ नहीं मिलती।

जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में लौट जाना है, कभी कब्रस्तान से गुजरना, वहां बहुत से बादशाह सो रहे हैं और बहुत से फकीर भी। मिट्टी ने किसी में फर्क नहीं रखा, फिर तू किस बात पे गुरूर करता है।